0: କୌଣସି କର୍ମ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ମନ ଦେଇ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଓ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଆଣିଦେବ। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 6:00। ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ, ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने से कई कदम उठाए गए हैं, दोषियों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना थी कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए और तत्काल परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक छोटा मुद्दा नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों से फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अपना अनशन समाप्त किया। वांगचुक की पंक्ति गीतांजलि आंगमू और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे थे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने ईश्वर से श्री वांगचुक के स्वस्थ बने रहने की प्रार्थना की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान और मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ

0: खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत रोमानिया साझेदारी समय के साथ लगातार मजबूत हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्होंने और राष्ट्रपति निकोसो डैन ने सार्थक और उपयोगी चर्चा की और हाल के वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक सुविधा और एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्याय संगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ଶୁଣିଲେ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲି କରି ପ୍ରଚାର କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ଭକ୍ତିଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦନା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ବନ୍ଦନା। ଶିଳ୍ପୀ ସୁନନ୍ଦା ପଟ୍ଟନାୟକ।

शिवजी का धनुष कठोर है, उसे सुकुमार श्रीराम किस प्रकार तोड़ पाएंगे? उधर पिता का अटल प्रण। पुष्प वाटिका में गौरी पूजन को जाती सीता मन ही मन विलाप करने लगी, किंतु भगवान के प्रताप का स्मरण होते ही उनके हृदय में हर्ष का संचार हुआ और वो जगत जननी के पूजन में लीन हो गईं। भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली हे देवी, आपकी सेवा करने से चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। आपके चरणों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। गौरी की प्रतिमा मानो सीता जी की विनय और प्रेम के वशीभूत हो गई, गले में झूलती माला खिसक आई और प्रतिमा मुस्कुराती हुई जान पड़ी। लगा कह रही हो, हे सीते, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नारद जी का वचन पवित्र और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है

0: ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଜୟପୁର ପୌରପାଳିକା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୟପୁର ପୌର ପରିଷଦ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ, ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଜୟପୁର ସହରର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆମର କାମନା।
1: ଶୁଣିଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଘୋଷଣା ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମେ ସମାଚାର ପ୍ରଭାତ, ପରେ ରହିଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ପରେ ପରେ ଶୁଣିବେ ଜଗତର ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁରୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଧାରା ବିବରଣୀ। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
8: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
7: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
8: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
7: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि

0: कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
1: दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं, अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बात जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
2: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृणयनी पांडे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशोर डांड के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: पेश वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुखारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत

0: 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टर्बाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
2: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं के पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीमा मंदिर में रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहेन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। पेपर लीक की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आज के अधिकांश अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा, आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा मसौदा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है वांगचुक ने आधी रात तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। वहीं आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर नवभारत टाइम्स का कहना है वेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता। अमर उजाला की सुर्खी है यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा। परीक्षा सुधार जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों की भी होनी चाहिए। 2 साल के अंतर की शर्त लगाकर नहीं रोक सकते मातृत्व अवकाश।

0: सरकारी कर्मियों के मातृत्व अवकाश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी दैनिक जागरण में है। न्यायालय ने कहा, पहले और दूसरे बच्चे के बीच 2 वर्ष का अंतर होने की शर्त लगाकर मातृत्व अवकाश देने से नहीं किया जा सकता इनकार। आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का ये बयान जनसत्ता में है। फिलीपींस के मनीला में 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध से खुले रहने चाहिए।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi promises new law to tackle paper leaks. Today's cabinet meeting to come out with stricter measures to deal with the issue. Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350 kg thrust class. India and Romania sign 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And 23rd Commonwealth Games begin in Glasgow, Scotland with spectacular and colourful opening ceremony. Prime Minister Narendra Modi has said that he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft to him late last night. In a video message last night, Mr. Modi said, "This draft includes provisions for fast-track courts and stringent punishment will be discussed by the cabinet today." He said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said, as the second week of Parliament begins on Monday, the government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest.
3: मैंने fast track court के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। Fast track court और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
2: The Prime Minister said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. Mr. Modi said government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year, and it was essential to conduct the examinations immediately.
3: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
2: The Delhi High Court has constituted a fast-track court to hear cases under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The move is aimed at ensuring speedy disposal of cases related to unfair practices in public examinations. More from our correspondent.
4: The newly designated fast-track court will function at the Ross Avenue Courts under the charge of Judicial Officer Anu Grover Baliga. According to a notification issued by the Delhi High Court, the court will hear cases registered under the Public Examinations

आमे विवरणी दबा आरंभ कलु आमर आशा जे वर्तमान गुंडीचा मंडप भितरे महाप्रभुंकर सेनापटा लागि नीति होउथबो एवं पहंडी समय अछि 12टा रु 8टा किंतु आमे आशा करूछु जे 12टा पर्यंत पहंडी रहिबो नाही ताहा पूर्वरु मध्य पहंडी हे जीवो एवं रथ चणा 4टा बेले अछि एवं गत वर्ष मानकर अभिज्ञतारु आमे आपनकु कहि पारिबु जे रथ चणा एवं पहंडी ए उभय जथेष्ट पूर्वरु हबार संभावना रहुचि तीन रथ अत्यंत सुंदर भाव सुसज्जित होकरी आम आगे नाकचणा द्वार अच्छा एवं नाकचणा द्वार जमी गुंडीचा जात्रा रे सिंह द्वार फूल मंडनी होता है नाकचणा द्वार से भली सुंदर मंडनी होती आम जिते सका आसलु देखिलु जो राति जो फूल तीन रथंकर सज्जीकरण होता मंडनी होता से फूल पत्र इत्यादि रथ उपर पड़ा कि समय पूर्व सेवक मैंने आसी तीन रथ को परिष्कार करदेचंते आ गोटे देखिलु आमे जे सरधा बाली रे जो बाली पड़ी आपण माने जानिचंते ये सरधा बाली तो प्रकृत रे बाली रो पड़िया थिला एवं रथ इठी चक मध्य पोती ही जाउथला किंतु एबे कंक्रीट ही जाइछि सरधा बाली तारी ऊपर बाली पकेकिरी प्राकृतिक सरधा बाली को कृत्रिम सरधा बाली रे रूपांतरित करी लोकमानंकु प्रकृत सरधा बाली रो अनुभव दवा पई प्रशासन प्रयास करिचंती एवं जो बाली पड़ी से बाली भितरे अनेक गुड़ी अनेक पत्थर पड़ी थिवारु आमे देखुतुलु ए जो पूरी म्युनिसिपालिटी रो सब सेविका माने से माने ता भितरु बाछी बाछी करी सब पत्थर गुड़ी सब गोटौथिले कारण सब लोक इठे खाली पादरे चालंती कहार पादरे गुड़ी पशिगले आघात हेइजिवो सेथिपई गुड़ी मानकु मध्य गोटौथिले आउ गोटे कथा जे अनेक गुटका एवं ए जो सब सब पुड़िया सब खाती लोक मैंने बहुत पुड़िया ये सरधा बाली रे पड़ा म्युनिसिपालिटी रो सेविका मैंने गोटौले कौन करवा श्रीक्षेत्र को आसिले केते सात्विक भाव रहिबा को पड़े एवं गुटका केते मारात्मक पुड़िया केते मारात्मक से पुड़िया उपर लेखाई स्वीकार नकरी न माने अनेक लोक पुड़िया खाऊंटे श्रीक्षेत्र में सरधा बाली से पुड़िया को चिरीकि फिंगी दौंती म्युनिसिपालिटी पौरपालिकार सेविका मैंने गोटौंट ये बड़े दुख लगुच देखिले कारण जिते कहले लोक डाक्तर मैंने कहले लोक मैंने निजे जाणी शुणा हेले मानु ना निज शरीर क्षति करवेश प्रदूषित करथ को पूरा कड़न कर दिखाई दुईट कड़न अच्छी गोटे हूँ इनर कड़न जोटे लुहार बारिकेड चारिपटे घेराई आउटर कड़न दौड़ी घेर भितर आरक्षी बाहन मैंने से कर्डन करके रखिंट तेणु ये भाव रथजात्रा जो व्यवस्था आवर्ष जानते गुंडीचा जात्रे जो सब असुविधा होता से असुविधार पुनरावृत्ति नाबापी एवर्ष प्रशासन बाहुड़ा जात्रा रे बहु अधिक पदक्षेप ग्रहण करजे मुख्यमंत्री मध्य प्रशासनिक व्यवस्था को आहरी कठोर करने निर्देश देते किंतु गोटे कथा आमको मन रखा हम ये जो गुंडीचा जात्रा एवं श्रीक्षेत्र रे बाहुड़ा जात्रा जहाँ हुए ये आम समस्ते काम करुले ये सबू कार्य महाप्रभु ही संपादन करती तेणु समस्त पक्ष नवेदन करवा समस्त पक्ष कर्तव्य हम जे महाप्रभु पाखे समस्त अनुनय करेंगे विनती करेंगे प्रार्थना करेंगे नम्रतार सहित समर्पण सहित जे महाप्रभु आम सब निमित्त होकर आपण सेवे निजुक्त अच्छु ये रथजात्रा को निर्विघ्न समापन करार दायित्व आपणकर आपण निजे श्रृंखलित भाव में ये कार्य को संपादन करतु ये प्रकार समर्पण भाव जदि समस्त भितर आसव केवल प्रशासनिक अधिकारी मान पक्ष नुहे समस्त भक्त श्रद्धालु मन भितर मध्य भाव जदि आसव ताल निश्चित भाव में निर्विघ्न सुरखुरी बाहुड़ा जात्रा कौन सी अघटन न होकरी समापन हम ए प्रकार विश्वास आमर हो परवर्ती धारा बरणी देवाई मुझर प्रथम केन्द्र में आज दुई जन वाच्यकार अच्छा डॉक्टर नरेश चंद्र दास और कल्याणी नंदी से अनुरोध करी और द्वितीय केन्द्र में जो बंधु मान अच्छा डॉक्टर कानून त्रिपाठी मुझे अनुरोध करी से प्रस्तुत रे आम यार सूचना जहाँ दे सारापर से ही केन्द्र से अंचल जहाँ तांकर अनुभव अच्छे जहाँ से देखुंटे सूचना देलापर पुणी प्रथम केन्द्र में जहाँ नीतिकांति महाप्रभु सूचना मिल आम आपण मान शुणु मु वर्तमान अनुरोध कर डॉक्टर नरेश चंद्र दास महाशय को से धारा बरणी दिंतु एवं आम तुरंत धारा बरणी अल्प अल्प दे आम

0: द्वितीय केन्द्र को वर्तमान चली धारा बरणी पाई धन्यवाद
1: नीलारविंद सुमिलिंद कलिंद चंद्र नीलांबुदालि दलितांजन पुंज मंजुम नीलाचलाधर शिरो मुकुटायमानम नीलांबरा नुजमजम शरणं व्रजामः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभय पाद पद्म तले अनंत कोटि भूमिष्ठ प्रणाम। आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, आज यही तिथि को बाहुड़ा दशमी कहा जाए। किए बाहुड़ आज जे जाते से आज बाहुड़ निजे महाप्रभु स्वतुंडे कही पकेले जेते बेले आमे जोठी बसुचे ये होची शरधा बाली। शरधा बाली को लागे करी गुंडीचा मंडप, गुंडीचा मंडप रे महावेदी उपरे महाप्रभु विराजमान करिसंती एवं मध्य सेठी अछंती एवं आउ अल्प समय परे तांकर लीला खेला सारी से पुणी जन्मवेदी रु कर्मवेदी को चली जेबे एवं सेठारे पुणी तांकर कर्म आरंभ करिवे। महाप्रभु जेतेबेले प्रकटित हेले एवं तांको पई गोटे भव्य मंदिर टे इंद्रद्युम्न महाराजा निर्माण करिथिले एवं सेही मंदिर रे महाप्रभु जेतेबेले प्रथम करी रत्नवेदी रे विराजमान कले सेतिक बेले पाखरे ब्रह्मा अछंती, इंद्रद्युम्न महाराजा अछंती, भरद्वाज मुनि अछंती, नारद महर्षि अछंती, केते केते मुनि ऋषि समस्ते अछंती, अनेक देवता अछंती, देवाधिदेव श्री जगन्नाथ महाप्रभु भाई भौणी सहित रत्न सिंहासन विराजमान करिछंती। हठात ब्रह्मा कहिले कहिले इंद्रदुम्न एथि पूर्वरु महाप्रभु एही क्षेत्र रे नीलमाधव रूप रे थिले एवं हे इंद्रदुम्न महाराजा तुमरी जोगु से आज दारु ब्रह्म रूप धारण करिछंती। तेणु महाप्रभुंकर दारु ब्रह्म रूप धारण पाई तुम्हें हूँ कारण, तेणु तुम्हें ताकू प्रार्थना कर। इंद्रदुम्न महाराजा आखिरु लुह खसी पड़ा एवं आनंद गदगद हो भक्ति भाव रत्न सिंहासन विराजमान करिथिबा महाप्रभु को से प्रार्थना कले एवं से एभली प्रार्थना करिथिले एभली भक्त थिले इंद्रदुम्न महाराज जहाँ फल प्रार्थन संतुष्ट हो महाप्रभु ताक मुह खोलीदे कहले इंद्रदुम्न से ताकर प्रथम बाणी थिला हे इंद्रदुम्न प्रसन्नस्ते मु तुम उपरे प्रसन्न होइछि। धन्य से इंद्रदुम्न धन्य ताकर भक्ति से भक्ति रे स्वयं अखिल ब्रह्मांड नाथ परम कारुणिक आनंद कंद सच्चिदानंद चिन्मय घन असरण शरण पद्म पलास लोचन अघटन घटन पटियान प्रभु भगवान श्री जगन्नाथ तुंड खोलिले कहिले इंद्रदुम्न प्रसन्नस्ते मु तुम उपरे प्रसन्न होइछि। कौन मते बर मागुच माग मु होउछि बरदायक बरदानी, तेणु जो माने बरदाता से मानको मध्ये मु बरदान करे, तेणु तुम इच्छा होउछि जहा मागे निया मोठारु। इंद्रदुम्न अंकर आखिरु केवल आनंदाश्रु बहुचि ब्रह्मा ठिया होती से मध्य देखुंट कौन इंद्रदुम्न मागिबे आउ कौन मागिबाकु अछि। जहाँ प्रेम रे वशीभूत हो स्वयं भगवान बड़देवर रत्न सिंहासन उपरे विराजमान करुचंती एवं कहिचंती इंद्रदुम्न मु तुम उपरे प्रसन्न याठारु बळी आउ अधिक कौन गोटे मनीष पक्षरे आवश्यक। सेतिपाई इंद्रदुम्न महाराजा चुप ही गले किछि कहिले नि वाक्य स्फुरिला नि। हठात इंद्रदुम्न महाराज कहि पकेले कहिले इंद्रदुम्न मु त तुमको जेते पचारुचि कौन तुम्हें बर मागुच माग तुम तो किसी मगुन मु कौन देवी तेबे तुम्हें जदि किसी न मगुच मो पाखे जहाँ सबुठारु भल वस्तुटी अच्छी मु तुम उपर प्रसन्न हो जाए तो सहीटा दे दौ ठिया इंद्रद्युम्न महाराज कौन कहले कहले।

0: ଭକ୍ତ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ କାମନା କରିଥାଏ
1: କି ନା ଏ ଜନ୍ମ ଆଉ ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ ଆମେ ଜାଣିନେ, ତେଣୁ ରକ୍ତ ମାଂସ ଦେହଧାରୀ ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଳେ ଆଶା କରେ ଯେ ମତେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ମିଳୁ, କାରଣ ଯାହା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର କହିଥିଲେ, ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ, ପୁନରପି ଜନ୍ମମ ପୁନରପି ମରଣମ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ,
0: ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯଦି ମାନବ ଜନ୍ମେ ଏହି ଲାଭ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ, ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ନିକଟକୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ, ସିଏ କାହିଁକି ଏ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବ, ତେଣୁ ତାର ଭକ୍ତି କୈବଲ୍ୟକୁ ଭକ୍ତି ପସରାରେ ସିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଖି ଖୋଲି ପ୍ରାଣ ଭରି ସିଏ ଏଇ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ
2: ଅନୁଚିତ ସାଧନୋ କି ରୋକଥାମ ଅଧିନିୟମ 2024 କେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାମଲୋ କି ସୁନୱାଇ କେ ଲିଏ ଏକ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟାଳୟ କା ଗଠନ କିଆ ହେ। ଇସ କଦମ କା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାର୍ବଜନିକ ପରୀକ୍ଷାଓ ମେ ଅନୁଚିତ ତରିକୋ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲୋ କା ଶୀଘ୍ର ନିପଟାରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନା ହେ। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त कर दी। श्री वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमू और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे मुलाकात की थी या पत्र लिखकर भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस समाप्त करें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन पोस्टों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक छात्र की मौत हो गई और पुलिस ने छात्र की मां की शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए हैं। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री एली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू रोमानिया की संसद जाएंगी और सीनेट के अध्यक्ष मिर्चा अब्दुरयान और चैम्बर ऑफ डिप्टीज के अध्यक्ष सोनिन गिनरेनू से मुलाकात करेंगी। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं। ईरान पर अमरीकी हमलों के तेज होने और यमन में हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में तेल टैंकरों पर हमले के बाद एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग खतरे में पड़ गया है। वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमतों में कल 6% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीवन में नेक और सदाचारी विचारों तथा कार्यों के महत्व पर बल दिया। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत कथन साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि व्यक्ति अपने कार्यों, विचारों और वाणी के माध्यम से जिस बात का निरंतर अनुसरण करता है वही उसके कल्याण को निर्धारित करता है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशाल वाहक लवलीना बोरगोहन के नेतृत्व में भारतीय दल ने लघु तिरंगे लहराते हुए स्पॉट से अरेना में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ଶୁଣିଲେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେକରି ପ୍ରଚାର କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଗତର ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁରୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାହୁଡ଼ାଯାତ୍ରାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଧାରାବିବରଣୀ।

0: जीवन रक्षार संकल्प सह सरकार आनी पीएम राहत योजना
1: जेउठी अनुबंधित घर डाक्तरखाना रे 7 दिन जाय 1.5 लाख टंका पर्यंत रो चिकित्सा खर्च सरकार बहन करंती
0: ओडिसा रो 798 घर डाक्तरखाना एही योजना रे पंजीकृत होईछंती
1: सेही भली समस्त सरकारी डाक्तरखाना रे सड़क दुर्घटनाग्रस्त चिकित्सा संपूर्ण मागणा
0: आसंतु मानवीयता रो एही संकल्प रे सहभागी होई आमे भी बढ़ाईबा सड़क दुर्घटनाग्रस्त को सहायता राहत
1: पवित्र घोष यात्रा रो हार्दिक शुभेच्छा
0: राज्य परिवहन प्राधिकरण ओडिसा द्वारा जनहितर जारी
2: राष्ट्रीय प्रगति रो भीति नारी को शक्ति विकसित भारत रे समृद्ध ओडिसा पाई महिला सशक्तिकरण को केंद्र और राज्य सरकारक विशेष गुरुत्व महिला सशक्तिकरण रो जुगांतकारी योजना सुभद्रा रे महिला को मिलिछि आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एकीकृत ममता और प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना रे योग्य हिताधिकारी को सहायता असुविधा रे थिबा महिला को तुरंत सहायता पाई महिला हेल्पलाइन नंबर 1811 असहाय महिलांक पाई शक्ति सदन वन स्टॉप सेंटर पोषण अभियान मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना इत्यादि माध्यम रे गर्भवती किशोरी प्रसूति और शिशुंक स्वास्थ्य को दिया जाउछि प्राधान्य प्रारंभिक शैशव जत्न और शिक्षा आमे पढ़िबा आम भाषा रे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अद्युका इत्यादि जरिया रे महिला और शिशुंक सर्वांगीन उन्नति पाई सर्वदा कार्यरत महिला और शिशु विकास विभाग ओडिसा सरकार
3: जय जगन्नाथ पवित्र रथयात्रा अवसर रे समस्त श्रद्धालु और भक्तवृंदंकु हार्दिक शुभेच्छा आपणक सुरक्षा और सुस्थता आमर प्रतिबद्धता खोला बासी और माछी बसुथिबा खाद्य खांतु नाही टटका खाद्य खांतु विशुद्ध पानीय जल व्यवहार करंतु दीर्घ समय धरिकि खरारे रुहंतु नाही धळा टुपी हल्का पोशाक किंबा ओदा कपड़ा व्यवहार करंतु यथेष्ट परिमाण रे पानी किंबा ओआरएस पानी पियंतु छेप खंकार अलिया आवर्जना को एणे तेणे न पकाई डस्टबिन रे पकांतु पाइखाना व्यवहार करंतु शौच परे साबुन रे हाथ धुअंतु रातिरे रहणी करुथिले मशारी किंबा मशा निवारक व्यवहार करंतु निशा सेवन ठु दूरे रुहंतु मुंड बुलेबा किंबा असुस्थ अनुभव कले विलंब न करी निकटस्थ स्वास्थ्य कर्मचारी किंबा स्वास्थ्य शिविर रो परामर्श नियंतु वयस्क व्यक्ति शिशु गर्भवती महिला और भिन्नक्षम जत्न नियंतु सुस्थ रुहंतु सुरक्षित रुहंतु
4: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ओडिसा
5: पवित्र रथयात्रारे पूर्वतट रेलपथर विनम्र सेवा जारी रहिछि ए वर्ष यात्रीमानंक सुविधा पई ओडिसार विभिन्न प्रांतरु ओ पडोसी राज्यरु विशेष ट्रेन चलाचलर घोषणा करा जायछि एति सहित अतिरिक्त टिकट विक्रय केन्द्र यात्री सहायता केन्द्र ओ स्टेशन मानंकरे यात्रीमानंक सुरक्षा पई विशेष व्यवस्था करा जायछि पूर्वतट रेलपथ आपनंक सेवारे
6: वर्तमान आमे देखुचु नाकचणा द्वार सम्मुख भागरे लोकारण्य अर्थात वर्तमान घंटुआ माने सेठी पहुँची गले नृत्यकारी माने सेठी पहुँची गले एवं आमे जानी परुचु या परे होउचंती पहंडी हेबे सेई बलभद्र भगवान दुर्भ्याम शोभित लांगलम समुसलं कादंबरी चंचलं रत्नाढ्यं वरकुंडलं भुजबळै राक्रांत भूमंडलं वज्राभा मलचारु गंड जुगलं नागेन्द्र चूड़ोज्वलं संग्रामे चपलं शशांक धवलं श्री कामपालं भजे आजि कामपाल विजय करिवे आउ अल्प समय परे आमे देखिबा कामपाल विजय करिवे यही जो घंटुआ माने वर्तमान घंट बजाऊ से माने श्री सुदर्शन भगवान को दर्पदलन रथरे आज छाड़करी जाती यही सुदर्शन हो समग्र विघ्नर उच्चारण करने से आसी जेहेतु प्रभु माने विजय करिवे चक्र विराजे दक्ष करे सूर्य की उदित अंबरे श्री जगन्नाथ महाप्रभु दक्ष कर बा डाहाण करे भगवान सुदर्शन विजय करिथांती एवं सी होती सूर्य कोटि समप्रभ से कहा जाए सूर्य की उदित अंबरे सत्य कण अंबर अर्थात नभोदय नभोमंडल सूर्य उदय हेले कि यही भाव विजय कले से श्री सुदर्शन महाराज घंट घंट घंट घंटा धीरे धीरे शुभिलाणी एवं आमे मध्य जो फांकरे आमे देखुले जे वर्तमान विजय करुले सुदर्शन महाराज से ही फांक दे वर्तमान आमे देखुचे धीर पदक्षेप परे पहाउंड परे पहाउंड

0: ଗଲା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦଟି କ'ଣ ନା ବେଦାନ୍ତ କହିଲେ ଆନନ୍ଦାତ୍ ଖଳୁ ଇମାନି ଭୂତାନି ଜାୟନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି ଗୋଟେ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଏବଂ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀର ମିଳନରୁ ସନ୍ତାନଟିଏ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଜୀବକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ମିଳନରୁ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ ମିଳନ ଜନିତ ଆନନ୍ଦ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଏଇ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ମୂଳଭୂତ ଆନନ୍ଦ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଏକ ପରମାର୍ଥିକ ଆନନ୍ଦରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ ସେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ବିଭୋର ହେଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ବିଭୋର ହେବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉପଗତ ହେଇଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତି ନେବା ମହାପ୍ରଭୁ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେଣି ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତି ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଧାରା ବିବରଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ
1: ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं
3: फास्ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया फास्ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा
2: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है
4: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं चल रहे हैं उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा तो युवाओं को न्याय मिलेगा
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोना वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण बार बार बाधित हुई दोपहर 12 बजे दोनों सदनों के फिर से शुरू होने पर विपक्षी दलों ने सदन को सुचारू रूप से न चलने दिया जिसके बाद लोकसभा को सोमवार 11 बजे तक और राज्यसभा को आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया इससे पहले दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के पटियाला जिला कार्यालय के एक प्रवर्तन अधिकारी को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है सीबीआई के सूत्रों के अनुसार 22 जुलाई को एक शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई सीबीआई ने आरोपी को शिकायतकर्ता से 2.5 लाख रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है निदेशालय ने कहा है कि जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के उस मामले से संबंधित है जिसमें लगभग 450 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी शामिल है मामले की जांच जारी है

जय जगन्नाथ। जगतर नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ रथयात्रा केवल एक पर्व नुह बर लक्ष लक्ष श्रद्धा आस्था विश्वास और भक्ति भरा दस दिन व्यापी एक महासमागम। यह पवित्र रथयात्रा अवसर में भक्त मान सुस्थता और सुरक्षा निश्चित करने आम समस्त दायित्व से खाद्य निरापत्ता प्रति सचेतन हवा अत्यंत जरूरी। यही समय रे खाद्य निरीक्षक माने निजर कर्तव्य सक्रिय भाव में तुलेबा समय रे आमको मध्य केते गुड़िया दिग प्रति यथेष्ट ध्यान देवाक पड़ो जमीती तटका खाद्य खातु एवं विशुद्ध पानी जल व्यवहार करतु। बाहर खोल में बिक्री होता खाद्य कृत्रिम रंग दि खाद्य बासी और दुर्गंध होता खाद्य मछी बसुवा खाद्य एवं पचासढ़ा फल और पनीपरिया आद खातु ना। खाद्य खाइबा पूर्वरु एवं परे तथा शौच हवा परे निज हाथ को साबुन ने भल भाव धुंतु। शरीर जल शुष्कतारु रक्षा पाइबा आवश्यक स्थले ओआरएस द्रवण पियंतु। सर्वदा पायखाना व्यवहार करंतु एवं परिष्कार।

0: Over any 80 paper leaks. Lok Sabha adjourned for the day amid opposition uproar. Supreme Court directs Centre and NTA to file detailed affidavits on progress made in implementing reforms after any 80 UG paper leak. India calls out United Nations for ignoring repression in Pakistan-occupied Kashmir, accuses Islamabad for systematically crushing rights of the people. IMD forecasts very heavy to extremely heavy rainfall over East Rajasthan, Gujarat and Madhya Maharashtra today, and India's Anahat Singh enters semi-finals of World Junior Squash Championships. With that, we end the midday news.
1: आकाशवाणी कटक महाप्रभु श्री जगन्नाथंक पवित्र बाहुडा यात्रार सीधा प्रसारण पई वर्तमान आपणमानकु नै जाउछु श्रीक्षेत्र पुरीर शरधा बालिकु
2: अनुभव हेउछि जे समस्तंक भितरे गोटे परिवारर भावना मध्य सृष्टि हे जाउछि काहेकि ना आम महाप्रभु होउछन्ति गोटे परिवारर महाप्रभु भाई अछन्ति भौणी अछन्ति सांगरे सेवक अच्छा आउ भक्त मानक नहीं तेणु ये जो महाप्रभु आम परिवारवादर ठाकुर आकु जो श्रद्धालु लक्ष लक्ष श्रद्धालु आने समस्ते कौन सी द्वेष ना कहीं का प्रति घृणा भाव ना
3: वसुधैव कुटुंबकम भाव
2: से कथा केवल शब्द रे नु आम प्रत्यक्ष भाव देखुचे
3: अनुभव कर
2: जड़े जन को रास्ता टिके मागुच से छाड़ दौंट जन जन को पानी मागिबा पूर्वर से पानी दे दौंट
3: जगन्नाथ प्राण तर मनीष उद्बुद्ध हो
2: जड़े जदि पानी बोतल टे पी पानी की पकई दौर बोतल खाली बोतल आउ जड़े अपेक्षा कर पहरी नहीं जा तेणु गोटे सुंदर परिवार बड़ परिवार वसुधार परिवार जो समग्र विश्व को जो वार्ता श्रीक्षेत्र बड़दाण्डर ये हूँ महाप्रभु दिव्य लीला
3: साहय सहयोग सेवा संस्कार और समर्पण यही पांचटी विचार यही पांचटी गुण आम आज अनुभव करुचु बड़दाण्ड में बड़गंडी छक पाखे रही आम अनुभव करुचु जे महाप्रभु केते दयालु
2: मानव मानव देह दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान ये जो दिव्य ज्ञान ये मनीष भितर सृष्टि होवा करने अन्य को साय अन्य को भल पाइबा श्रद्धा करने से आम जाणी दरकार जे प्रकृत मनीष जन्मर सार्थकता हूँ एतिक जे मनीष पणिया गोटे हृदय थिबा दरकार आउ जदि पशु आम भितर ये तफात आम जाणीचे जे सामान्य मेत पशुधीर नारायणम आहार निद्रा भय मैथुन यो चारिटा जिनस पशु आम मानक भितर एक एकता रही मात्र समता रही मात्र आम भितर जो दिव्य गुण हूँ
4: अच्छा त्रिपाठी महाशय डॉक्टर कानून को महाशय आपण मते सुनि परचंदी
3: आमे समाज रे निश्चित भाव रे जने जने भलो मनीष बा एही ज्ञान प्रदान करबा पई महाप्रभु एही प्रकार रो विचार रखी चंदी एही प्रकार रो वार्ता रखी चंदी एही प्रकार रो भाव रखी चंदी एणु आमे आशा करबा जे प्रकृत रे महाप्रभु रे जो विश्व प्रसिद्ध आज बाहुडा यात्रा आमे देखुचु अनुभव करुचु
2: प्रथम केन्द्र केन्द्र सहित आमर जोगाजोग रखुचु
4: हाँ मत शुणी पार्टी डॉक्टर त्रिपाठी
3: हाँ हाँ कह
4: हाँ ये तीन रथ रे ठाकुर मैंने आरूढ़ बर्तमान चारमा तलु सबु लोक बाहर कर दिखाई आरक्षी बाहिनी माने बहुत लोक थिले चारवाल तले तेणु तांकु निजे पूरी पुलिस एसपी निजे तत्वावधान रे समस्त को बाहर करुछंती परवर्ती कार्यक्रम गजपति महाराजांकर छेरा पहरा हबो किछि सूचना अछि कि सेपटु
3: नै आसी नांती गजपति महाराज आसी नांती किंतु आ अल्प समय भितरे आसीबे बोली आमे भाबुचु चिंता करुचु एवं आगुरु तामजान जाइकिरी सही पहुंची जाइची बड़ संकट रे पहुंची जाइची तेणु खबर पाइला परे गजपति महाराज कार रे आसीबे बड़ संकट पाखुरु जिबे आपणकर तामजान रे सही सरदा बाली गुंडीचा मंदिर सम्मुखस्थ सही रथ निकट को
4: अच्छा सेपटे गो

0: से खड़ी का धैले जो
1: जय जगन्नाथ। पवित्र रथयात्रा अवसर रे समस्त श्रद्धालु और भक्त वृंदंकु हार्दिक शुभेच्छा। आपणक सुरक्षा और सुस्थता आमर प्रतिबद्धता। खोला बासी और माछी बसुथिबा खाद्य खांतु नहीं, तटका खाद्य खांतु। विशुद्ध पानीय जल व्यवहार करंतु। दीर्घ समय धरिकी खरारे रुहंतु नहीं। धळा टुपी, हल्का पोशाक किंबा ओदा कपड़ा व्यवहार करंतु। यथेष्ट परिमाण रे पानी किंबा ओआरएस पानी पियंतु। छेप खंकार अलिया आवर्जना को एणे तेणे न पकाई डस्टबिन रे पकांतु। पाइखाना व्यवहार करंतु। शौच परे साबुन रे हाथ धुअंतु। रातिरे रहणी करुथिले मशारी किंबा मशा निवारक व्यवहार करंतु। निशा सेवन ठु दूरेई रुहंतु। मुंड बुलेबा किंबा असुस्थ अनुभव कले विलंब न करी निकटस्थ स्वास्थ्य कर्मचारी किंबा स्वास्थ्य शिविर रो परामर्श नियंतु। वयस्क व्यक्ति शिशु गर्भवती महिला और भिन्नक्षम जत्न नियंतु। सुस्थ रुहंतु, सुरक्षित रुहंतु।
2: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ओडिशा।
3: जय जगन्नाथ। वर्तमान गजपती महाराज जिकि साक्षात चलती विष्णु बोली जहाँ को आमर ओडिया जाति चीर नमस्य भाव ग्रहण करिसंती। से गजपति महाराज वर्तमान बड़ भाई बलभद्र रथरे छेरा पहरा कार्य समापन कर सारे जोड़हस्तरे प्रभु निकटरे मागुछंती मागुणी। ओडिया जातिर मान गर्व अभिमान सबकिछि जेपरि बलवत्तर रहिबो से समर्पित भावना नहीं सेवा करुछंती उत्कलर मौड़मणि वीरश्री गजपति गौड़ेश्वर नवकटी कर्णाट उत्कल वर्गेश्वर। प्रभु केते परम दयालु। प्रभु मध्य आशीर्वाद करंतु उत्कलर गजपति चलंती विष्णु को सदा सर्वदा तांकर जीवन कुसुमित हो उठु। जगतर जी कल्याण निमंते प्रभु निकटरे निजक समर्पण कर देछंती से गोटे परे गोटे जो कार्य चलुला। प्रथमे आसिले शुक्ल जो राजनीति बंदापना आ छेरा पहरार जो कार्य चलुची दुई गोटे पर्यायर कार्य। प्रथमे शुक्ल पुष्प को सिंचन कले आई ने गजपति महाराज। तापर चंदन गुंड वर्तमान सिंच कर जल सिंचन करजे कहाली बाजुची आउ सेवा कार्य जो सहयोग करुछंती। आज यात्रार सुंदर दिव्य भाव भंडार मेकअप दयनामाली घटुआरी गराबड़ सेवक मुदुली सेवक राजगुरु काहालिया तड़ाऊकरण देउलकरण राजज्योतिष मध्य रही छेरापहरा कार्य प्रभु निकट में निजक समर्पण कर प्रभु नौ।

0: थर छेरा पहरा को दिव्य सेवा को आद्य सेवक संपन्न करी तांकर सही जो तमजान रे बसी से फेरी आसुछंती श्री नहर को द्वितीय अवसर रे बड़ ठाकुर महाप्रभु बलभद्र बड़बाड़ सामंतंकर से दिव्य ताल ध्वज रे घटक माने प्रस्तुत एवं चाहूक मध्य तांकर स्वस्थान रे प्रस्तुत रही से रथ को दौड़ी धरी टाणीबा पाई जो प्रस्तुतिर पर्व वर्तमान चूड़ांत हो सारा नंदी घोषर मध्य चारमाल खोला सरला आउ परे परे माँ कपिल्यवासिनी सुभद्रिकांकर चारमाल खोला हेबो तबे आपण माने जानी खुशी हेबे आमर ए द्वितीय केन्द्र जहाँकि बड़ संघ पाखरु आमे अवलोकन करि पारुछे आउ सिंहत्व श्री मंदिर पर्यंत ये संपूर्ण परिवेश बड़दाण्डटी जन समुद्रर एक उत्ताल तरंग सदृश केवल मुंड मालगुड़िक मुंडर दर्शन आम करुचे आउ बड़दाण्ड आमको देखा जाऊना इति अवसर में फेरी आसुचंती आद्य सेवक गजपति दिव्य सिंह महादेव दिव्य सिंह महाराज जहाँ आगरे दुईटी छत्री दर्शन करेंगे आपण मैने से छत्री दुईटी हूँ कला छत्री धला छत्री आम मैने अनुभव करवा जोबले जगन्नाथ पहंडी हुए बा बलभद्र महाप्रभु पहंडी हुए कला ठाकुर पाखरे धला छत्री आउ धवल वर्णर ठाकुर जे कि बलभद्र पाखरे कला छत्री धरा होता है मात्र गजपति महाराज पाखरे दुईटी छत्री त्रास चामर पड़ुची श्वेत चामर राजगुरु सहित आसुचंती ये जो लेंकाकरण देउलकरण एवं घटुआरी ये जो वर्णाढ़्य परिवेश ये जो परंपरा एत देश प्रसूतस्य सकाशात अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिखेरन पृथिव्याम सर्वमानवः पृथ्वीर सब मानव माने आमर ए वर्णाढ़्य सेवा को आमर ए नीति परंपरा को आमर ए आदर्श को आमर ए पारिवा पणिया को समस्ते अवलोकन करुछंती आनंदित हेउछंती गर्व अनुभव करुछंती आपण माने जानी आश्चर्य हेबे जेहेतु अल्प किसी समय व्यवधान रे महाप्रभुंकर दिव्य तालध्वज रथ टणा आरंभ होइजिवो सेतिपाई उभय बड़दाण्डर उभय जो कोठागुड़िक अछि सेई अट्टालिकार विभिन्न जो महला सब रहिछि सेई महला मानंकर छात उपरे समस्ते सरका निकटरे जी जेउंटि पारुछंती रही निजर स्थान को संरक्षण करिछंती एते आदर एते आग्रह एते भाव एते मानसिकता जे आम महाप्रभु को टिके आखि पुरै देखिबु आज आमरी आग दे से दिव्य महाप्रभुंकर से जो ऐश्वर्यपूर्ण देवदुर्लभ रथ त्रय आज आमरी आगरे जिबे यही अपेक्षार आम देखि पारुछु संपूर्ण भावरे प्रति जो बड़ जो कोठागुड़िक भक्त मान अच्छा तेणु ये कथा रे आपण माने केते आनंद अनुभव करुथिबे
1: सुंदर समस्ते अपेक्षा करिछंदी केते बले महाप्रभु बड़ बलियार भुज बड़ ठाकुर तालध्वज रथ केते बले आसीबो केते आगु को आसीबो समस्ते आपण देखंतु बड़ दांडर उभय पटरे श्रद्धालु भक्त माने अपेक्षा करिछंदी देखिबा पई ये होची भाव ये भाव समुद्र
0: जो छोट छोट दुकानी माने तांकर दुकान मेली थिले से माने सब उठेई नै गेलेनी काई ना एते गहली बढ़ी छि से माने बिक्री मध्य करि परन पुनी आगो को चाललेनी जहा कि सिंह द्वार पाखा पाखी से माने चली गेलेनी तेनु धीरे धीरे समस्त गति वर्तमान सिंह द्वार आड़ को
1: एवं आजि
0: समुद्र परिपूर्ण होई गेलानी
1: प्रताप बाबू आजि तीन रथ टणा हई सिंह द्वार सम्मुख को जिबे नगले काली सुनावेश हेइ पारिबो नाही
0: ये हेउ महाप्रभुंकर दायित्व
1: तेणु आज जहां ले भी तांको नहीं गिरी जिबे
0: आमे केवल कर्तव्य संपादन करिबा आम हाथ में रही केवल दायित्व महाप्रभुंकर सेवा
1: से नहीं पळेबे के
0: प्रति आराधना तेणु ए जो दिव्य अवसर रही आपण माने जानंती श्रोता बंधु दुईटी मासरे ए दिव्य रथ त्रय निर्माण करा जाए भोई सेवायत महाराणा सेवायत माने तीन रथर तीन जन सरदार तांकू दिया जाए साड़ी बंधा

ज्ञान हृद सिंहासने आसन पाती बस बस प्रियतम। सतरे केड़े भाग्य आम मानकर आमे गोटी रथ को देखुचु आउ ए देह को एक रथ सदृश करी से रथर हृदय रूपक सिंहासन रे आम प्राण प्रिय ठाकुर महाप्रभु दारु ब्रह्मंकु जगन्नाथंकु बलभद्र महाप्रभुंकु माता सुभद्रांकु बसाइबार प्रयास करुछु। एठि भक्त आखि बुझि स्तुति करुछि, जणाण करुछि, वेद मंत्र पाठ करुछि एवं महाप्रभुंकु किपरि भावरे सिए खुशी करि पारिबो सेतिपाई संकीर्तन मंडली मानंकर एते गहळ लागिछि। वास्तवरे ये हेउछि बड़ ठाकुरंक प्रति वर्तमान बड़ दांडरे एई बड़ जो धाम श्रेष्ठ धाम पावन क्षेत्र रे समस्ते प्रयास करुछंती। छोट छुआटी तार

0: श्री चरण बिनु अनगति नाही जगबंधु हे गोसाई। ये से पुण्य परिवेश जो परिवेश भितर अनेक श्रद्धालु माने भक्त साल बेगंकर से समाधि पीठर द्वार देश में ठिया हो उभय आड़ को चाहूंचंती रथ को चाहूंचंती दूररू जेहेतु बड़ शंखर आग को आसीगलनी बड़ बाड़ सामंत आउ भक्त साल बेगं को चाहूंचंती समाधि पीठ को सतरे तमे केते बड़ भक्त थिल महाप्रभु को आहे नील शैल एहीपरि संबोधन करी महाप्रभु केते निज करिथिल तेणु से मानकर जनाण आज वेदमंत्र सदृश जगन्नाथ प्रेमी श्रद्धालु मानक कार्य करूची एवं प्रतिटि परिवार रे ए वार्ता पहुंची महाप्रभु जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्तंकर जगत पति जगत नाथ एक कथा को अंगीकार करिसंती सर्वधर्मर व्यक्ति माने सर्वधर्मर मनीष माने गोटिए परिवार सदृश बड़दांड रे आनंद को से माने उपभोग करूचंती।
1: बाबू वर्तमान दुई पटरे आउजी की रहिले भक्त माने वर्तमान अपेक्षा करिसंती केतेबेले तालध्वज रथ आसिबो आमे संदर्शन करी निजर मन तन चैतन्य पवित्र करिबा संगे संगे चर्म चक्षु को निर्मल करिबु पवित्र वातावरण भितरे आमे आगो को माडी जिबु
0: एई जो ज्ञान आसु से माने बडदांड को वर्तमान पिचु रास्ता बोली भाबु नांती बा धूली दूसर बोली भाबु नांती अनेक भक्त आम केन्द्र आगरे पद्मासन पकाई चेका पकाई बसी गलेनी आउ से माने थकी पड़िछंती दिन सारा प्रभु पाखे दंडाय मान हो दर्शन करिवारे से माने बसी जाइछंती से बसीबा भितरे किंतु छाड़ी नाहंती तांकर से प्राण प्रिय ठाकुर को
1: जनन
0: करिबा बा चिंतन करिबा एक आराधना रे बसीछंती केतेबेले मो निकटवर्ती हेबे से बड़ ठाकुर मु तांकर से दौड़ी रो स्वर्ण चूड़ रो से ना बासुकी नागर से स्पर्श टिके पाइबी ए कथा को से माने अपेक्षा करी रहिछंती शंख चूड़ रो स्पर्श टिके पाइबी ए कथा को से माने अपेक्षा करी रहिछंती। वास्तव रे ए जो परिवेश बेळ को बेळ एक महार्घ परिवेश हो जाउची आध्यात्ममय हो जाउची पुण्य पवित्रमय हो जाउची ए होची महाप्रभुंकर दिव्य रथर आगमन रे समस्त जेपरी ओ निज को हजई दउछंती
1: महाप्रभु माने जमति पाट डोरी रे बंधा हेकि जाउथिले रथ को तांको दौड़ी मध्य जो बासुकी कहिले नाग कहिले नागुणी कहिले ये जो भक्त भगवान मिलन
0: बंधन प्रिय ठाकुर जुगे जुगे बंधन हो रही आपण विशेष करी जगन्नाथ महाप्रभु को देखंतु सिकुली फिटा हला जेते बेले स्नान बेदी को आसीबे पुणी गले अणसर घर भीतर रहिले बंधन होई तापरे पुणी आसीले रथरे बंधा होई रुंधा होई रहिले पुणी रथरु फिटा हेले पुणी आड़प मंडप रे बंधा हेले
1: भाव रज्जुर बंधन भाव डोरी रो बंधन भक्त भगवान मिलनर बंधन
0: तार ना हूँ रसिक सिकुली से रसिक सिकुली जदि बंधा टिके न हबो कालिया को निद हेबो नाही सी सब ठिया पहुड़ रहउछ
1: रसिक नागर।

0: निकटरे सेठारे से रहिबे एवं एही समय रे महालक्ष्मी ठाकुरानी चाहणी मंडप को आसीबे देखिबे जे महाप्रभुंकर एही पीत लोहित वर्णील जो नंदीघोष रथ से वर्तमान श्रीनगर निकटवर्ती हेलेणी तेणु से सीठू बाहरिबे बाहरिकी आसीबे पालिंकी आसीबे सेवक मान गहन आसीबे बेश पाट मकुटा पिंधिथिबे एवं जेतेबेले से आसीबे सेतेबेले बलभद्रंक सम्मुख भागरे गोटे कपड़ा पड़िथिबो तार कारण होउछि ये होउछन्ते देढ़सुर से भाई बहु तेणु देढ़सुर भाई बहुकर जो संपर्क आपण आज यही जो रथ भेट समय आपण देखिबे तापर से अतिक्रम कर आसीबे नंदीघोष रथ निकट को महालक्ष्मी ठाकुरानी आज महालक्ष्मी ठाकुरानी आसला परे तांकर मानभंजन करने प्रक्रिया आरंभ हम गजपति महाराजा से निजे टेकिकी माँ को जगन्नाथ सहित मिलन करेबे ये दृश्य अति अपूर्व दृश्य ए आज अनुष्ठित हेब एवं महाप्रभु आज्ञामाल आसी तांकु लागी करा जिवो आज्ञामाल पाइला परे शांति हेकि से जिबे किंतु तथापि मनरा कुहळिबो ताको मन जमा सफा हबनी काहीकि ना कि भलिया काम कले प्रभु ताकू न नहींक्री एड़े बड़े यात्रा करी फेरिले एवं फेरिला फेरिकी हेले शीघ्र पलि आसते पुणी आहरी तीन दिन बाहुड़ा यात्रा पर सुनावेश सुनावेश पर अधरपणा अधरपणा पर नीलाद्री विजय हेले जा दर्शन करी तेणु रागवापी जथेष समय मिल जाऊँ राग से हीदिन शांत हम जो दिन महाप्रभु नीलाद्री विजय करे बड़ देउलर जो बड़ कबाट खोल जय विजय द्वार खोल एवं महालक्ष्मी ठाकुरानी जगन्नाथ निकट में जोबले रसगोला भोग सर तर अभिमान भंग हम महाप्रभु जीवे तेणु बर्तमान आधिक मु समय ने आम पाखे अच्छा आमर वरिष्ठ घोषक एवं विद्वान डॉक्टर शांतनु रथ महोदय मुझे निवेदन करुच्ची से धारा बरणी प्रदान करेंगे।
1: जय जगन्नाथ आपण मानू आम श्रोताबंधु सूचना देवा चाहिए ये तीन अंग विशिष्ट रथजात्रार तृतीय अंगे आम उपनीत हो प्रथम अंग थिला श्रीगुंडीचा यात्रा महाप्रभु श्रीमंदिर बाहरी घोष यात्रा आसिले आड़प मंडप गुंडीचा मंदिर से सात दिन अवस्थान कर नवम दिन में प्रत्यावर्तन यात्रा यही प्रत्यावर्तन यात्रार वर्तमान स्थिति होउची जे बड़ ठाकुर बलभद्रंकर तालध्वज रथ पाखापाखी बड़ शंख पाखरे पहुँची माँ सुभद्रांकर दर्पदन रथ यही शरदा बाली प्रथम केन्द्र गुंडीचा मंदिर सामनारू किछि बाट आगे की रही आपण माने जानी रथ मानकर गोटे निर्दिष्ट व्यवधान नहले रथ गुड़िक टणा हो पारे ना तेणु ये माँ सुभद्रांकर दर्पदन रथ बलगंडित नुहे बड़शंख पाखापाखी हेले जाइकिरी आमर नंदीघोष रथ टणा हेब तेणु नंदीघोष रथ टणा हबार जो अपूर्व मुहूर्त से मुहूर्त को समस्त प्रतीक्षा ताकू आम प्रतीक्षा करु रथर जो शेष पर्याय संपर्क तो आपण को सूचना देले आमर डॉक्टर नरेश चंद्र दास आहरी तीनोटी उत्सव अच्छी गोटे हूँ सुनावेश गोटे हूँ अधरपणा आ गोटे हूँ नीलाद्री विजय ये तीन टी जाक उत्सव ऐतिहासिक उत्सव ये पवित्र पावन घोष यात्रार 2026 मसीहार अंतिम चरण से आम उपनीत होचे आकाशवाणी बड़ सौभाग्य जे 1948 मसीह आकाशवाणी प्रतिष्ठा होगा दिन धारा बरणी कर पवित्र पावन अवसर महाप्रभु आकाशवाणी को प्रदान कर 1948 मसीह 2015 मसीह पर्यंत अपेक्षा करने को पड़ा बाहुड़ा यात्रार धारा बरणी एवं बाहुड़ा यात्रार धारा बरणी 2015 आरंभ हो बर्तमान 11 वर्ष से पहुँचला आम अपेक्षा करवा महाप्रभु पुणी केत पुणी आर वर्ष को आमको सुजोग देवे एवं यही पवित्र घोष यात्रा पावन यात्रार जो बरणी आपण मानक आम दबार सुजोग लाभ करुचु से सुजोग महाप्रभु ही आमको प्रदान करुचंती महाप्रभु आकाशवाणी को प्रदान करुचंती आकाशवाणी जो विशिष्ट व्यक्ति मानक चयन कर अतीतर धारा बरणी दबार परंपरा जारी रखिंट से परंपर आम जड़े जड़े

0: बाबू का गीत सुनैलू
1: सुनैलू
0: नहीं कि एबे ए गीत मिशा खेती लागला तो के जात्रा डोगन फर लागला कि नहीं
1: लागला है
0: मात्र तू मिशा गोटे कथा बरता सुनै बरा छे
1: दे गोटे आन लिया छे गोट दीदी संग कथा ले छे सुनाई दू ताती
0: आले
1: आले दीदी जुहार
2: जुहार जुहार
1: आले दीदी तमन नाच ने कुआ
2: मोना संगीता बेहरा
1: काहे काम करलास ने दीदी
2: मो कृषि अधिकारी अछि ए सीडी ऑफिस जयपुर कोरापुट रे
1: तमर घर कोनते
2: ओ मो घर एठी जयपुर रे
1: जयपुर
2: आले
1: बड़े निको कथा हेले केते पूरा पाठ पढ़ रहे लास्ट दीदी
2: मो करीची बीएससी इन एग्रीकल्चर करची
1: आले सरकारी कृषि विभाग था ना आचा हेले दीदी तमर कृषि विभाग था ना एजन आचास काय काय काम मन कर लास ने दीदी
2: एथरे आमे माने कोनो चासी मानको सब प्रकार स्कीम विषय रे जणाउ कि तांको केते कोनो माने मूल्य तांके तांकर आय गुडा को बढे परिबे को भी स्कीम तांके नहीं पारी की तांको मूल्य बढे परिबे तापर तांकर जदी किछि भी प्रश्न रहूची तार सटीक उत्तर दे कि आमे केमती तांको भल भाबरे माने उत्तेजित करि परिबा अलगा अलगा प्रकार जो भी चाष अछि हमरो सेई सब गुडा को नै कि से माने केमती तांकर जो जमी अछि तार मृत्तिकार सबुर बेनिफिट करेबा आ
1: सेई काम आले आले हेले एटा केतेक दिन पर हला दीदी
2: मोर एबे जुलाई रे गोटे वर्ष हबो
1: आले
2: हेले नि जॉइन हिची
1: आले आले केते लोक के ए विषय थाने तमे कोइलास कि केनती किना चास करबा जो ए जोन चास
2: हां हां कहलेणी
1: कहलास
2: मुख्य ऑफिस को त आसी थाउ चंदी बहुत चासी
1: आले आले
2: तो आमे तो हेल्प करू
1: सब चासी मन कर संगे मिसला चास
2: आज्ञा
1: हेले दीदी मोर गोटे आज प्रश्न आछे काईटा बोले जैविक चास बोले काईटा
2: जैविक चाष बोले आम से कौन कौच नर्माली अर्गानिक चाष तो एटा गोटे एमती चाषा जोटा कि आगुरु ही जोटा कि आम जे भी अच्छा आगर मान जेजे बापा कि जहा से करूले कि धीरे धीरे जिते आम बेस चाष कर मान ये रोचु कि आम बेस चाष कर बेसी पैसा करूँ तो धीरे धीरे आम कौन कर रासायनिक यूज
1: करीटनाशिक
2: सब कर द्वारा आम को कष्ट होने आम देह खराब हो सब आम देखुनु किंतु एबे जेहेतु धीरे धीरे एडा गोटे सचेतन आसलाण कि आम देह खराब हो सब तो एबे धीरे धीरे जो जैविक जैविक चाषटा धीरे धीरे एबे सब चाषी माने करबा पे चाहूचंदी एथिरे कोन होची आमे किछि भी रासायनिक जमती कि फर्टिलाइजर हो से सब यूज करनु इनसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो कृषिनाशिक तो से गोडा किछि यूज करनु तो जहा द्वारा आमर जो माटी रहूची माटी रो उद्यता बढ़ूची तार जीवन बहुत बढ़ूची जहा जोगु कि आमे जहा भी फल पनीपरिबा जहा भी तो सेटा आम देह पे सबटु भलो सुस्थ रहूची आउ सुजग रहूची
1: एले दीदी एबे तम कहला जैविक चास कले ফল চাষ করলাইনি সেটা আমি খাইলুনি শাক ডাল করলাইনি কি হলে সি চাষ থানু এই জন জৈবিক চাষ কলে আমি কাইটা লাভ হয়েছে
2: এটা আমি দেখুন এটা লাভ হচ্ছে আমি জৈবিক চাষের যেহেতু আমি কিছু ইউজ করুন মানে রাসায়ন তো এই সবুর পয়সা আমার বঞ্চুছি এথেরে আমি গোবর ক্ষেত মানে নিজের যে গোবর মানে অছি আমার কোন কোন জীবামৃত তারপরে অগ্নিমৃত সেই যে অগ্নি সেটা আমি যে নিম পত্র যা বি আমি যে ঘরেলু মানে ঘর যোড়া সব তৈরি হয়েছি সেই সব আমি স্প্রে করু যদি কিছু পোক লাগিলা তো সেইটা স্প্রে করছু আর গোবর ক্ষত সব দিয়ে আমি গছকু লগাউছু বড় করুছু তো এই সবুর আমার পয়সা বি বঞ্চিলা যেহেতু এটা আমার সব ঘরে হচ্ছে আমার গাই দেউছি তো এই সব পয়সা বঞ্চিলা কিন্তু আমার পয়সা বড়ুচি যেতবে আমি পরে ফল কি পনিপরিবা হচ্ছে আবিষ্যতরে এই জৈবিক চাষটা গোটে বহুত হি মানে কোন কোন বহুত ফেমস হব আদ্বারা বহুত মূল্যবান মানে মূল্যবান হবে চাষী মানে মানে দুই গুণ পয়সা বেশি পাইবে
1: হলে দিদি এই যে জৈবিক চাষ কলে এবে দেখা খত আমি ব্যবহার করলুনি এই থানে নাকি উনা উনা শাক ডাল হয়েছে এবে যখন রাসায়ন সার দেলে আমার জবর চাষ হলানি হলে ল চাষী ভাই বোনি মন সে চাষ উপরে একা জবর অধিক ধ্যান দেলাইনি

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में घोषणा की थी कि पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। इस बीच संसद परिसर में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
2: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
3: लगभग

0: घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
1: इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रामका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है।
2: डिमांड है तीन, उनमें से दो डिमांड कॉम्पेंसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उन

0: प्रदर्शन को लेकर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे सदन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। उधर लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। इससे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
1: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उससे जुड़ी घटनाएं भारत के लिए गहन चिंता का विषय हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से ही भारत संघर्ष में शामिल पक्षों अमरीका और ईरान के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार के साथ लगातार संपर्क में है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: सुनिले हिंदी संवाद लेकर प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्ली आकाशवाणी जयपुर केन्द्र कार्यक्रम शुणुंट শুনন্তু চলিত অধিবেশন এবং আসন্তকালি প্রচারিত হওয়ার কার্যক্রম সম্পর্কে সূচনা।

0: हेलो भाई, जय जगन्नाथ।
1: जय जगन्नाथ। आज्ञा नमस्कार। लक्ष्मी नारायण बाग ग्राम चेन्द जिला सुवर्णपुर कहि।
0: तेबे भाई आपण केमती अछंती?
1: बहुत बढ़िया अछि। आज्ञा आपण केमती अछंती?
0: मु भी बहुत बढ़िया अछि भाई। आउ आपण रथ यात्रा गलेनी बुलिबा को?
1: रथ यात्रा दोसन आज्ञा बर्षा हला जे हलाणी पुनि खाली गोडा के जे भाई।
0: रथ यात्रा गुंडीचा स्टार्ट हला दिन ठु आपण बुलिबा को जाई नांदी?
1: जाई नांदी बर्षा हो लागल होतला तो आज्ञा।
0: अच्छा
1: खाली जीवा भाई हम जे आज्ञा।
0: आज्ञा निश्चय। रथयात्रा रे जगन्नाथ को दर्शन करी आशीर्वाद पाइबा समस्त भाग्य रे थाए।
1: आज्ञा
2: भाई कौन करथले?
1: ये विश्राम ने दिले आज्ञा खाई जी।
2: वर्षा सेड केमती होछ भाई?
1: वर्षा हो जी आज्ञा। प्रथम पाटा ये बोन ने निकल छन वर्षा लागि रहितला।
2: अच्छा ताले भाई कोहन तो आपण को गीत सुनिमे?
1: ये तो अछि आपको भावड़ा ते ऊपर गोटे महाप्रभु ऊपर गीत अछि आज्ञा गाछंती हमरो अरविंद मधुली गीत टी होछि आए गणपति घना करो ही मिनती।
2: आउ थरे कहिबे भाई गीतटा?
1: आए गजपति घना करो ही मिनती। अरविंद मुदली गाई जाते।
2: बहुत बढ़िया गाइले भाई। आउ टे गाई थान थे ना?
1: आउ टे आउ जाने के दई ना सती किट मन आथी।
2: अच्छा अच्छा हौ भाई आमे आपणकर गीत निश्चय बजे देबो। हालो गुंजन कार्यक्रम को कॉल करथिबारु आपणको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार आय्या।
2: नमस्कार।

आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने आज हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही पहले स्थगन के बाद 12 बजे दोबारा जैसे ही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आज सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रमुख विपक्षी दल का नेता होने के नाते और प्रधानमंत्री के पेपर लीक पर सख्त कदम उठाने की घोषणा के बाद विपक्ष को संसद में इस पर चर्चा कराने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सरकार कठोर कानून बनाने जा रही है, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है और सरकार की मंशा मजबूत कानून लाने की है, तो फिर विपक्ष को चर्चा में सहयोग करना चाहिए। प्रमुख विपक्षी दल के नेता होने के नाते श्री गांधी को इस दिशा में पहल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि चर्चा नहीं होती है तो इसका संदेश गलत जाएगा। श्री रिजिजू के आग्रह के बाद भी विपक्षी दलों ने हंगामा जारी रखा। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उन्हें अपनी सीट पर जाना चाहिए। उनका कहना था कि आज महत्वपूर्ण विधेयक है, इसीलिए सदस्यों को अपनी सीट पर जाकर सदन को चलाना चाहिए। हंगामा जारी रहा तो पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन उनकी बात पर ध्यान दिए बिना सदस्य नारे लगाते रहे। इस पर श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, सदस्य सवाल पूछते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही शुरू होते ही सदन को कारगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 2026 को कारगिल दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है, जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय योगदान दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता

संप्रभुता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि देश में किसानों को उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम से पहले राज्यों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है और उसी के आधार पर मासिक आपूर्ति योजना बनाकर

उन्होंने कहा कि फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए वर्ष 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू है। इसके तहत कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि सब्सिडी पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर दी जाती है। किसानों को डीएपी 50 किलोग्राम की बोरी 1,350 रुपए के वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए खरीफ और रबी 2025-26 तथा खरीफ 2026 के लिए एनबीए सब्सिडी के अतिरिक्त 3,500 रुपए प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान भी किया गया है, ताकि उर्वरकों की कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 से अब तक देशभर में 26 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की खपत में 8-10% तक कमी आई है, जबकि फसलों की उत्पादकता में 5-6% तक वृद्धि दर्ज की गई है। नीति आयोग ने भी एनबीएस योजना को संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए उपयोगी बताते हुए इसे और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में कहा कि FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य योजक विनियम 2011 अधिसूचित किए हैं, जिनमें बिस्किट, खाद्य तेल तथा अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के मानक निर्धारित किए गए हैं। इन विनियमों के अनुसार पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है। चूंकि पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है, इसका उपयोग स्नैक्स, बिस्किट, नमकीन और अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में खाद्य तेल के घटक के रूप में करने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमन 2020 के अनुसार खाद्य उत्पादों की सामग्री सूची में प्रयुक्त खाद्य तेल का विशिष्ट नाम देना अनिवार्य है। केवल खाद्य वनस्पति तेल जैसा सामान्य नाम लिखना पर्याप्त नहीं है, इससे उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलती है और वे सूचित विकल्प चुन सकते हैं। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। FSSAI के मानक स्वतंत्र वैज्ञानिक जोखिम आकलन, वैज्ञानिक पैनलों और समितियों की राय पर आधारित होते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोडेक्स मानकों के अनुरूप बनाए जाते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक लिखित उत्तर में कहा कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य के माध्यम से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करता है। मिशन वात्सल्य योजना अन्य बातों के साथ साथ किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 तथा मिशन वात्सल्य दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके और बाल देखरेख संस्थानों को छोड़ रहे पात्र युवा वयस्कों के लिए उत्तरोत्तर देखभाल सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में बताया कि जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं, अतः जन स्वास्थ्य सुविधाओं में मानव संसाधन की पर्याप्तता और सेवा उपलब्धता सहित स्वास्थ्य परिचर्चा प्रणाली को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी, जिसकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 100 एमबीबीएस विद्यार्थियों की है, को स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग एनएमसी द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार स्थापित किया गया है। वर्तमान में कॉलेज एमबीबीएस शिक्षा के लिए एनएमसी विनियमों के तहत अनिवार्य विभागों, अवसंरचना और सुविधाओं से सुसज्जित है। वर्तमान में कॉलेज में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी आदि जैसे सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित नहीं किए गए हैं। कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी आदि जैसे रोगों से संबंधित गंभीर रोगियों का उपचार सामान्य चिकित्सा विभाग के संकाय द्वारा किया जा रहा है और जिन रोगियों को सुपर स्पेशलिस्ट परिचर्या की आवश्यकता होती है, उन्हें KGMU लखनऊ SGPGI रेफर किया जा रहा है।

आप सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा और सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय बनाने के प्रावधान वाला एक विधेयक सदन में पेश किया गया। हंगामे की वजह से आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। सभापति ने कहा कि 26 जुलाई को देश करगिल विजय दिवस मनाएगा। ये दिन 1999 के करगिल युद्ध में भारत की जीत की याद में और हमारे सशस्त्र सेनाओं के उन बहादुर अधिकारियों तथा सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अद्भुत साहस, वीरता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा के साथ देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर ये सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। हम सशस्त्र सेनाओं के उन सभी सदस्यों के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त करते हैं जिनका दम्य साहस, दृढ़ संकल्प और असाधारण चुनौतियों के बीच निस्वार्थ समर्पण देश को प्रेरित करता रहता है और देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को और मजबूत करता है। सभापति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस सदन के सदस्य बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने में मेरे साथ शामिल होंगे। इसके बाद सदस्यों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शूरवीर सैनिकों के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा। करगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है लेकिन इस बार 26 जुलाई को रविवार होने के कारण अवकाश होगा और संसद की बैठक नहीं होगी, इसलिए आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और प्रश्नकाल शुरू करना चाहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्य विरोध करने लगे। सभापति ने हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और उच्च सदन में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने फिर से सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए आमंत्रित किया। श्री खड़गे ने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करते हुए बयान देना चाहिए। श्री खड़गे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने भी हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में अव्यवस्था देख राधाकृष्णन ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा करने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति हरिवंश ने विपक्षी सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए कहा कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम विधेयक 2026 को पेश किया जाना है जो आज के कामकाज की सूची में सूचीबद्ध है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक के विरोध में प्रस्ताव रखते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटस ने कहा कि संविधान में जो बात तय हो चुकी है संसद उसे सामान्य अधिनियम के जरिए संशोधित नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये संशोधन विधेयक पूर्णतः देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की मंशा पर आधारित है किंतु ये संविधान के उन संदर्भों की अनदेखी करता है जिनके आधार पर मूल कानून बनाया गया था। श्री ब्रिटस ने कहा कि संविधान सभा ने लगातार 3 वर्ष तक गहन विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक समान दर्जा नहीं दिया।

0: था। उन्होंने कहा कि किसी कानून के जरिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद पैदा नहीं किए जा सकते। विधेयक की मंशा समाज का ध्रुवीकरण करना है। विधेयक को पेश करने के विरोध में प्रस्ताव पेश करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी ने कहा कि वंदे मातरम का उद्देश्य समाज को एकजुट करना है, बांटना नहीं है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: सुनिले संसद समीक्षा लेखरु प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्ली रु आकाशवाणी जयपुर केन्द्र रु आपण माने कार्यक्रम शुणुछंती। ए मासर भक्ति गीतर विशेष कार्यक्रम नैवेद्य। आज कार्यक्रम शिल्पी लक्ष्मीनारायण बेहरा एवं विद्युत प्रभा पट्टनायक। गीत रचना करिछंती पीताम्बर मिश्र। संगीत निर्देशना एवं स्वर संयोजना करिछंती प्रफुल्ल कुमार राउतराय। तबे प्रचार करछु आज कार्यक्रम प्रथम भक्ति गीत शिल्पी लक्ष्मीनारायण बेहरा।

0: ଶୁଣିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର। ଶୁଣନ୍ତୁ ସମାଚାର ସନ୍ଧ୍ୟା କ୍ରମରେ ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଏବଂ ପରେ ସ୍ପଟଲାଇଟ୍ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
3: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
4: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
2: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
5: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
2: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही

0: आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मानसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
2: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री परिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे

0: बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनर्स्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
1: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहां पर हम ज्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
2: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जीवन के दुख हमें सुधरने और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, जबकि जीवन में लगातार सुख कभी कभी हमारे आत्म विकास में बाधा बन सकता है।
3: आपने बहुत सुंदर विचार भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी जी,
3: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
2: भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा,
3: और गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, अनाया गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और बेटी प्रियांशी।
2: अयोध्या धाम से राजबाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे और विनय शंकर पांडे के साथ साथ नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: धन्यवाद आप सबको और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
3: श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के एक अनूठे उत्सव की।
2: अब तक हमने असम, नागालैंड और झारखंड के उत्सवों की चर्चा की, आज रुख करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां का अनूठा उत्सव है कैल पोध। ये उत्सव कर्नाटक राज्य के कुर्ग क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
3: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि कुर्ग भारत के सबसे सुंदर और रमणीय स्थानों में से एक है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ और पर्वतीय प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है
2: जी।
3: यहाँ के खूबसूरत कॉफी के बाग दुनिया भर में जाने जाते हैं, इसीलिए कुर्ग को कर्नाटक का स्कॉटलैंड कहा जाता है।
2: इसी कुरुक्षेत्र में रहती है कोडावा जनजाति। कोडावा लोग प्राचीन भारत में योद्धा समुदाय माने जाते थे और इनकी वीरता की गाथाएं वहां की लोक कथाओं में भी मिलती हैं।
4: भारतीय सेना में भी इनका योगदान बहुत अहम रहा है।
2: तो हम बात कर रहे थे कैल पोध उत्सव की। सबसे पहले जानते हैं कि कैल पोध का क्या अर्थ है।
3: श्रोताओ, कैल का मतलब है हथियार या उपकरण और पोध का मतलब है उत्सव, यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। यह हर साल 3 सितंबर को मनाया जाता है, तब तक धान की रोपाई हो चुकी होती है।
2: उस दिन कड़ावा जनजाति के लोग अपने घर से हथियार और कृषि के उपकरण निकालते हैं, उन्हें फूलों से सजाते हैं। फूलों में खासकर फ्लेम लिली फूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो वहाँ प्रचुरता से पाया जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी फ्लेम लिली फूल के बारे में।
3: श्रोताओं, ये भारत, अफ्रीका और एशिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला अत्यंत आकर्षक और दुर्लभ फूल है
2: जी।
3: इसकी पंखुड़ियाँ तेज लाल और पीले रंग की होती हैं, जो आग की लपट की तरह दिखाई देती हैं। इसी कारण इस फूल का नाम फ्लेम लिली पड़ा
2: जी।
3: कुर्ग की वादियों में जब ये फूल खिलते हैं तो बहुत ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये फूल तमिलनाडु का राजकीय फूल भी माना जाता है।
2: उत्सव के दिन मवेशियों को भी नहला धुलाकर फूलों से सजाया जाता है और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वे खेती बाड़ी के कार्य में सबसे बड़े मददगार हैं।
3: बता दें श्रोताओं कि हथियारों की पूजा से संकेत हिंसा का नहीं है, लेकिन सुरक्षा का है
2: जी।
3: वे हथियारों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में किसी भी आक्रमण के समय उनके कारण ही, यानी हथियारों के कारण ही सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी थी
2: जी।
3: साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पुराने समय में उन्हें अपने परिवार, पशुओं और गांव की रक्षा खुद करनी होती थी। इसी कारण हथियार उनकी सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बन गए।
2: कैल पौध उत्सव में कृषि उपकरणों का भी सम्मान किया जाता है, क्योंकि वे भी खेती बाड़ी का प्रमुख माध्यम हैं। पूजा के बाद कुरुक्षेत्र में जगह जगह पर समारोह होते हैं। जगह जगह पर विशेष साज सज्जा के साथ मेले लगते हैं। कोडावा समुदाय की वीर

0: ताकि कथाओं की झांकी प्रस्तुत की जाती है।
1: श्रोताओं, कोडावा संस्कृति से संबंधित चित्रकला और नृत्यों का भी सामूहिक प्रदर्शन होता है। उस दिन कोडावा पुरुष अपनी पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, जिन्हें चक्कली कहा जाता है।
0: कैलपोद उत्सव के दिन पारंपरिक व्यंजनों की भी भरमार रहती है। चावल की बनी कंड बट्टू विशेष लोकप्रिय है। इस दिन लोग एक दूसरे को फूलों की भेंट देकर सम्मानित करते हैं।
1: श्रोताओं, कैलपोद उत्सव कोडावा जनजाति की योद्धा संस्कृति, कृषि जीवन और गौरवशाली परंपराओं की याद दिलाता है।
0: ये भारत के दुर्लभ उत्सवों में से एक है, जहां हथियारों की पूजा हिंसा के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कर्तव्य, सुरक्षा और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में की जाती है।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कैलपोद उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैलपोद शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कैलपोद उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैलपोद शब्द का क्या अर्थ है?
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है दो मेंढकों की यात्रा।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक जापानी मनोरंजक हास्य लोक कथा पर आधारित है, जिसमें दो मेंढकों की मजेदार यात्रा का वर्णन किया गया है।
1: दो मेंढकों की यात्रा।
2: नमस्कार साथियों, आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं एक मजेदार जापानी लोक कथा। कुछ समय पहले की बात है, जापान में दो मेंढक रहते थे। एक मेंढक ओसाका नगर के पास एक छोटे से खड्ड में रहता था और एक क्योटो नगर के बाहर एक छोटे से तालाब में निवास करता था। एक दिन ओसाका नगर के मेंढक के मन में एक विचार आया।
3: क्या वही शहर, वही गलियां, वही लोग, इस जगह पर रहते रहते अब बहुत दिन हो गए हैं। मुझे जरा बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए।
2: ये संयोग ही था कि उसी समय क्योटो में रहने वाले मेंढक के मन में भी यही विचार आया कि उसे भी बाहर निकलकर कुछ भ्रमण करना चाहिए। अगले ही दिन दोनों मेंढकों ने अपनी अपनी यात्रा शुरू कर दी। दोनों नगरों को जोड़ने वाला एक ही मार्ग था। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। ओसाका के मेंढक ने क्योटो के मेंढक से पूछा,
3: तुम कहाँ जा रहे हो मित्र?
4: मित्र, मैं ओसाका जा रहा हूँ। और तुम?
3: मैं क्योटो जा रहा हूँ।
2: दोनों मेंढकों ने लंबा रास्ता तय किया था। वे बहुत थक भी गए थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना थोड़ा आराम भी कर लिया जाए। वे पास स्थित एक बड़ी सी चट्टान की छाया में जा बैठे और बातचीत करने लगे।
3: यहाँ थोड़ा आराम है, थोड़ा सुस्ता लिया जाए, हैं? तो जरा मुझे भी बताओ कि यहाँ तक की यात्रा कैसी रही?
4: भाई, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। रास्ता बहुत सुंदर है। तुम तो जानते ही हो कि ये चेरी ब्लॉसम का समय है। चारों ओर चेरी के फूलों की भरमार है। और हाँ, जब मैं एक पहाड़ी के पास से गुजर रहा था ना, तो ट्रेन भी देखी। वहाँ रहने वाले एक मेंढक भाई से पूछा तो उसने बताया कि इसे बुलेट ट्रेन कहते हैं। क्या तेज गति थी। जब तक मैं ठीक से देख पाता तो वो गायब हो गई। कहते हैं कि इस ट्रेन से सिर्फ 15 से 20 मिनट में ओसाका से क्योटो पहुंचा जा सकता है।
3: भाई वाह।
4: अब तुम अपनी यात्रा के बारे में भी तो बताओ।
3: मेरी यात्रा भी बड़ी अच्छी गुजरी।
4: अच्छा,
3: पूरे रास्ते में हरी भरी प्रकृति और साफ सुथरे शहर। और हाँ, मैंने भी रास्ते में चेरी ब्लॉसम के फूल देखे।
4: वाह,
3: हल्के गुलाबी और सफेद रंग के ये फूल बहुत सुंदर हैं। सुना है इन फूलों को हमारे देश की पहचान माना जाता है।

0: बहुत अच्छा हुआ जो मैंने यात्रा करने का निर्णय लिया, वरना मैं तो वहीं खड्ड में पड़ा रह जाता।
1: हाँ ये तो है।
2: दोनों मेंढक एक दूसरे को अपनी यात्रा का हाल सुना रहे थे। अचानक ओसाका के मेंढक के मन में एक विचार आया। वो बोला,
0: मित्र कितना अच्छा होता यदि हमारा आकार थोड़ा और बड़ा होता।
1: क्यों, आकार बड़ा होने से क्या होने वाला है?
0: आकार बड़ा होने से हमें इतनी यात्रा तो नहीं करनी होती।
1: आई? वो कैसे?
0: अरे भाई मैं समझाता, आकार बड़ा होता तो हम किसी भी पहाड़ पर चढ़कर देख लेते कि जहां हम जा रहे हैं वे शहर देखने लायक भी हैं या नहीं।
1: हाँ कहते तो तुम ठीक हो, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये काम तो हम अभी भी कर सकते हैं।
0: वो कैसे?
1: अरे वो ऐसे कि हम पास के पहाड़ पर चढ़कर एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपने पिछले पांवों के सहारे खड़े हो जाएं। हाँ इससे हमारा आकार भी बड़ा हो जाएगा और फिर हम आसानी से उन शहरों को देख सकेंगे जहाँ हम जाना चाहते हैं।
0: भाई वाह!
2: दोनों मेंढक इतने उत्साहित हुए कि वे उछलते हुए पास के एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। दोनों बड़ी मेहनत के बाद एक पहाड़ के शिखर पर जा पहुँचे। लंबी और ऊंची चढ़ाई के कारण दोनों काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे।
0: बड़ा ऊंचा पहाड़ है, पसीने आ गए, चारों टांगे दुख रही हैं।
1: ये तो है, अरे चढ़ते रहो चढ़ते रहो।
3: बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी। चलो पहुँचे तो सही।
1: वो तो है, लेकिन मित्र मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हाँ क्योंकि अब हम शिखर से उन शहरों को देख सकेंगे।
3: मैं क्योटो देखूंगा
1: और मैं ओसाका।
3: क्यों नहीं, चलो
1: चलो।
2: तो साथियों हुआ ऐसा कि ओसाका के मेंढक ने उछलकर अपने अगले पैरों को क्योटो के मेंढक के कंधों पर रख दिया और क्योटो के मेंढक ने भी ऐसा ही किया। अब दोनों मेंढक अपने पिछले पैरों पर खड़े थे, उनके अगले पैर एक दूसरे के कंधों पर थे। दोनों ने गिरने के डर से एक दूसरे को कस कर पकड़ रखा था।
0: अरे अरे अरे अरे ध्यान से।
1: चलो
0: संभल कर।
1: कहीं गिरना पड़े मित्र। ये ठीक है।
3: बचे।
2: यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन दोनों ने एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया था।

0: ध्यान से।
1: चलो
0: संभल कर, संभल कर।
1: कहीं गिर ना पड़े मित्र। ये ठीक है।
2: बचे।
3: यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन दोनों ने एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया था।
0: कितना दिखाई पड़ता है, अब तुम्हें क्या दिखता है मित्र?
1: क्या बताओ मित्र, मुझे भी ओसाका क्योटो की तरह ही दिखाई दे रहा है।
2: ये तो सचमुच बड़ा धोखा हुआ।
0: मुझे लगता है यहाँ तक आकर मेरा समय ही नष्ट हुआ। मैं तो उसी खड्ड में ही ठीक था,
1: और मैं उसी छोटे से तालाब में ही ठीक था। क्या लाभ हुआ इतनी यात्रा करने से, इतना कष्ट सहने से। चलो चलो यहाँ से।
0: हाँ चलो।
3: फिर क्या था, दोनों मेंढक अपने अपने घर वापस लौट गए। तो साथियों, अभी आपने सुनी ये जापानी लोक कथा, आशा है आपको पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा सोचिए, इन दो मेंढकों की यात्रा क्यों व्यर्थ हुई? किसी यात्रा से पहले हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसकी एक सूची बनाइए। क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसी हास्य प्रधान लोक कथा है जिससे ये संदेश मिलता हो कि यदि कोई कार्य सोच समझकर नहीं किया जाए तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? जापान के क्योटो और ओसाका शहरों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए और पता लगाइए कि वे क्यों प्रसिद्ध हैं।
4: अभी आपने सुना कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम दो मेंढकों की यात्रा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार मुइनुल हसन नियाजी, वैभव श्रीवास्तव और ममता मलकानी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: आइए अब चलते हैं एक और यात्रा में कार्यक्रम नमक के साथ।
2: इस कार्यक्रम में भारत पाक विभाजन के पश्चात एक स्त्री की यात्रा के बारे में बताया गया है। जब वो पाकिस्तान से भारत आती है, उसने महसूस किया कि बेशक दोनों देशों के बीच सीमाएं खींच दी गई हैं, लेकिन लोगों के हृदयों में आज भी कोई सीमा रेखा नहीं है।
3: खुदा खैर करे राहिल, क्या नाजुक वक्त है
4: जी।
3: हिंदुस्तान पाकिस्तान ने नेकी, मोहब्बत और रहम दिली सब पर पहरा खड़ा कर दिया। अब देखना, कल मेरी दिल्ली की रवानगी है।

0: और दिल है कि कांपे जा रहा है।
1: अरे सफिया बाजी, दिल्ली लाहौर की दूरी ही कितनी है, यहाँ से 10 फलांग? आप तो बेवजह परेशान हो रही हैं।
0: अरे राहिल, इस 10 फलांग ने तो 2 मुल्कों की शक्ल इख्तियार कर ली है। दिल्ली और लाहौर तो उन लोगों से पूछो जिनकी आंखों के पानी में शहर झांकता नजर आता है।
1: बाजी आप तो अदीब ठहरी, आपसे भला कौन बहस कर सकता है। अरे बाजी, इस पुड़िया में क्या है?
0: नमक, लाहौरी नमक।
1: लाहौरी नमक? आप इसका क्या करेंगे?
0: देख राहिल, अपना पुलिसिया तेवर अपने पास ही रख। और इसमें इतनी हैरानी क्यों है? नमक ही तो ले जा रही हूँ। क्यों भाई, नमक नहीं ले जा सकते क्या?
1: नहीं ले जा सकते बाजी, गैर कानूनी है ये।
0: है?
1: और वैसे भी नमक का आप करेंगे क्या? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है।
0: मैं हिस्से बिखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है।
1: मेरी माँ? बाजी हमारी माँ बंटवारे से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई है। और कौन सी माँ है जो हमारी है?
0: हमारी नहीं राहिल, मेरी माँ। दिल्ली में मुझे एक सीख बीबी मिली, वही छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती है, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह। हमारी अम्मी जैसा कद, अम्मी जैसा भारी भरकम जिस्म, सफेद मलमल का दुपट्टा ओढ़ा करती हैं वो, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह।
1: देखिए बाजी, बंटवारा हुए काफी अरसा बीत गया, अब तक तो वो वहां ठीक से रच बस गई होंगी।
0: लेकिन लाहौर नहीं भूला उनसे राहिल, साटा लाहौर। जब मैं लाहौर तेरे यहाँ आ रही थी तो मैंने उनसे पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। तो मेरी माँ हिचकिचाकर मुझसे बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना।
1: देखिए बाजी, मोहब्बत, जज्बात, आत्मीयत, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन नमक, अरे बाजी आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई ना तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। आप कानून तो जानती नहीं।
0: अरे निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के लेकर जाऊंगी क्या? मैं तो दिखा के जता के लेकर जाऊंगी।
1: ओहो बाजी, आप समझ नहीं रही हैं, कानून भी तो कोई चीज है।
0: फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत मुरव्वत इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, क्या एक तोहफा भी नहीं ले जाने देंगे मुझे?
1: ओफो, अब आपसे कौन बहस करे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ बाजी, आप ले जा नहीं पाएंगी ये नमक, और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को जानती कितना है?
0: देख राहिल, कस्टम वालों को जानू या ना जानू, पर इंसानों को थोड़ा बहुत जरूर जानती हूँ। पुड़िया को कहाँ रखूं? ऐसा करती हूँ कि इनकी टोकरी में नीचे दबा देती हूँ, कोई पहचान भी नहीं पाएगा, कस्टम वाले तो खोज भी नहीं पाएंगे। नमक की पुड़िया मैंने छुपा तो दी, अगर कस्टम वालों ने खोज ली तो? नहीं नहीं, ऐसा करती हूँ मैं ये पुड़िया हाथ में ले लेती हूँ, मैं खुद ही बता देती हूँ उन्हें।

0: अच्छा बाजी, अब लाहौर कब आएंगे आप?
1: मालूम नहीं राहिल, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं।
0: अरे कहाँ जा रही हैं बाजी आप?
1: नमक का मोल पूछने।
2: आइए आइए जनाब, आप आइए, इधर आइए, इधर आइए। ए जनाब, आपसे कह रहा हूँ, आप इधर आइए। हाँ हाँ ठीक है।
1: लगता है यही कस्टम ऑफिसर है, इन्हीं से बात करती हूँ। सुनिए
2: जी, फरमाइए।
1: अब आप कहाँ के रहने वाले हैं?
2: मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी।
1: जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी। वो लोग इधर ही आ गए हैं। आप
2: जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है।
1: अब जी, ये थोड़ा सा लाहौरी नमक।
2: नमक? देखिए, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। और हाँ, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा। और जिन खातून के लिए आप ये नमक लेकर जा रही हैं, उन्हें मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा।
1: जी शुक्रिया।

0: चलो, खैरियत से दिल्ली तो पहुंच गई।
1: आप इधर आइए, इधर आइए।
2: मैं जनाब,
1: आप
2: लीजिए जनाब,
1: अपना सामान चेक कराइए।
2: लो जनाब, देख लो जनाब, हो गया जनाब, जाएं।
1: हाँ ठीक है,
2: ठीक है जी, खुदा।
1: आप भी इधर आइए, आइए सामान।
0: साहब, मैं एक गैर कानूनी चीज, ये देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा।
3: आप इधर आइए।
0: हाँ जी,
3: हमको पूरा बात समझ में आ गया। चाय खाबो?
0: हाँ?
3: माफ कीजिए, चाय पियेंगी क्या आप?
0: नहीं।
3: मैं आपको कमाल का चीज दिखाता हूँ। मेरे पास नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर की ये किताबें जी। हाँ? हाँ, ये मेरे मित्र सुनील दास गुप्ता ने 1946 में तोहफे के तौर पर दिया था।
0: तो साहब, क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं?
3: हाँ, मेरा वतन ढाका है। जब डिवीजन हुआ तभी आए। मैं कोई 12-13 साल का था। ढाका में दोस्तों के साथ नजरुल इस्लाम को खूब मन से पढ़ता था। मेरा वतन ढाका है। और नमक, इसका वतन कौन सा? आपको राज का बात बताऊं? हम डाब आज भी अपने वतन ढाका का ही पीता है। किसी से कहना मत।

0: वतन तो कस्टम वालों का होता है, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है, दिल में।
1: सही कहा साहब, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है। मोहब्बत नमकीन भी तो होती है ना साहब। इन आंसुओं की तरह
0: नक्शे पर लकीर खींच देने से जमीन और लोग बट नहीं जाते।
1: ठीक कहते हो साहब।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नमक, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: सुनिले एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आकाशवाणी जयपुर केन्द्ररू आपण माने कार्यक्रम सुनुछन्ति।
4: आपण जणे व्यवसायी कि आउ आपणक व्यवसाय को बढ़ेबा को चाहुछन्ति कि
5: तेबे चिंता करंतु नहीं, एणिकि आकाशवाणी जयपुर आपणक व्यवसाय को बढ़ेबार दायित्व नबो।
4: रेडियो रे विज्ञापन दियंतु आउ आपणकर व्यवसाय को बढ़ांतु।
5: सुलभ दर रे आपणकर व्यवसायर विज्ञापन पहुंची जिवो सबुठी सबु समय रे आउ समस्तंक पाखरे।
4: विज्ञापन पाई जोगाजोग करंतु 8280306927 किंबा 9449408097 नंबर रे।
5: आकाशवाणी जयपुर सदा आपणक साथी रे सबु समय रे आपणक सेवा रे।
3: हम परवर्ती कार्यक्रम सुनंतु महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर घोषयात्रा उपलक्ष्य गीतनाट्य भक्ति बालिका दास, रचना डॉक्टर ब्रजमोहन महांती, प्रयोजना गोपबंधु चौधरी, संगीत सजेछन्ति राखाल चंद्र महांती। कार्यक्रम को रिले करि प्रचार करुछु आकाशवाणी कटक केन्द्ररु।
6: भक्त बालिका दास, रचना ब्रजमोहन महांती, प्रयोजना गोपबंधु चौधरी, संगीत राखाल चंद्र महांती, नाटक भक्त बालिका दास।

0: तुम्हो इच्छारे भोग कर गोल की हांकर ए मन्ते जाचु करे धरी से आम्ब
1: सुनिगला
0: चली
1: सुनिगला चली
0: हाँ रे बाप सतुक सत आम्ब बार देहरु गोटा पर गोटे आम्ब अंतरित होइगला अल्प समय मध्ये आम्ब भोज खाली एक सतक मिश जाना पंडा दौड़े रत्न सिंहासन पाक देखिले टाकुआ गुड़ा रत्न सिंहासन पाखे जन्म
1: आई दिन ना दासिया तेरे मनुष्य नुहे से भगवान।

0: संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
2: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभा पति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली यातायात पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के अंतर्गत लागू निषेधाज्ञा के मद्देनजर नागरिकों को अधिसूचित क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एनटीए ने एक बयान में कहा कि यह उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। चीन के हांगझो में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट्स से चूक गई। चीन की याओ क्यांग सुन 243.6 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रही। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced